चुक चुक अटल शब्द गुरु सारी सृष्टि के किरदिया ठंड पाने वाले सतगुरु गुरु नानक साहब निरंकार की ज्योत दे मालक जिन्हां दी पावन पवित्र दरगाह अंदर आपां नूं सतगुरु रोज बिठा लैंदे हन अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे महान उच्चे अस्थान तो हुक्मनामा सतगुरु जी बख्शदे हन लखां की किरदे सतपुरां दे हुक्म नूं अपनी झोली विच बड़ी श्रद्धा प्यार सिदक भरोसे नाल पवा रहे हन। अज मेरे सतगुरु गुरु अर्जन साहब पिता जी ने सूई राग अंदर 740 अंग ते पावन पवित्र हुक्म बख्शिश कीता है। सतगुरु जी अज हुक्म कर रहे हैं कि दुनिया का कोई मनुख है जिन्हों तुसी मिलदे हो जरूरी नहीं उन्हों मिलन तो बाद तुहानू चंगा फल मिले, पर सतगुरु के दर्शनां विच इतनी ताकत है जे इन्हां कोल आओगे तो फल मिलेगा ही, तो फल भी वो नहीं मिलेगा जिहड़ा नुकसान करे। साहब कहिंदे जिहड़ा भला करेगा पुलां तारेगा वो फल देंदे सतगुरु जी। सफल दर्शन फल सहित फल बारे आपां कल विचार कीती सी ना, भावें उह दुनियादारी दे फल कौन भावें निरंकार दी प्राप्ति दा फल कोवे ते भावें उहदे नाम दा फल कोवे, सारे फल उहदे कोल ने। ते साहब कहिंदे जिहड़े सतगुरु के दर्शन करन नाल सारा ही प्यारो फल मिल जांदे ने, ऐखो जे सतगुरु दी मूरत तो स्वरूप तो बलखार क्यों नहीं जांदे। सदके जाओ कहिंदे कुरबान जाओ कदे कदे नहीं, सदा कुरबान कीता गुरु विट्टों जिस दियां ए वड्याईयां, जिहड़े सच्चे पातशाह दियां वड्याईयां ने उन्हां तों सदा ही कुरबान जाइए, अपना आप उन्हां तों वार ही सुटीए। गुरु के प्यारो ਗਰੀਬ ਅਨੁਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜੋੜੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਆਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਘਬਰਾਈਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਘਬਰਾਈ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਪਵੇ, ਅੰਦਰ ਖੁਸਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵੱਸਦੀ ਰਹੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਰਨ।

0: वचन नूं ध्यान विच रखना धार के रखण नाल के इह जिहड़ा साहिब जी दे घर दी कहानी है उहदे नाल साडा अंदर जुड़दा भरदा उहदे नेड़े हो के उहदियां खुल्लियां रहमतां नूं माणींदा कै
1: रसना जाप जपो बनवारी
0: जिहड़ी ना रसना इहदे नाल हुकम है कि जाप जपो बनवारी अकाल पुरख दा नाम जपना कि जदो पुछया ना पंचम पिता दे बचन पी जड़ी पुछदी है मैनू दस कि जवाब पता है कि ओ देंदा है ओ कहंदे ओ कहणगे मान तान बुद्ध खतीरे सानानक तो काग वतीरे कहंदे किते मान छड दे किसे चीज ते मान ना कर ना पैसे टके ते ना अपनी सेवा सिमरन ते ना अमृत वेले उठन ते ना राता जाग के जपन ते मान छड दे तू दूसरा तान अपनी ताकत नाल नहीं उनू मिलिया जा सकदा बस यही क्या कर मेरे कर जियो सब को तेरे वस असा जोर ना सी जे किस कर कम साके जो पावै तिवें बख्श साहबा मेरे तान नाल नी जोर तुम्हारा सुख वसा सच शब्द निशान ते तीजा बचे ने अंकार वाली जिहड़ी बुद्धि है ना हतीरिए नू नास ही कर दे मान भी खतम ताण भी ताऊ मिलदा है पर चीजा अपने आप ही साहब कहिंदे जदो रसना नाल जपांगे फिर ये सारा कुछ सतगुरु आ मुखारे करोणगे इदां दे ख्याल भी उठणगे अरदासां भी निकलणगियां ते साहब आपे ढो भी टवाएगा
1: सफल मूरत दर्शन बलहारी
0: साहबां दे दर्शन दीदार फल वाले ने ते जिहड़ी साहबां दे दीदार देंदे ही फल ने जिन्नी वार आईए ते कहिंदे क्यों ना ऐहो जे सतगुरां तों बलकार ते सदके जाइए कहिंदे असीं तां इक दो वारी मत्था टेक के थक जाने आ ना पर जिन्हां नूं ए लालसा लगदी ना महाराज दे रंग वेख लै ओ तां कहिंदे बलकारी गुर आपणे

0: राम नाम जप पार उतारी।
1: वाहिगुरु जी दा नाम जप के पार कोई उतरिया ते अज उतरेंगे ते कल नूं वी उन्हें ए नाम जपा के पार उतारना। पर कई बार ना असि कल खुन्ने थॉमस एडिसन कहिंदे उन्हें आ बल्ब जो इहदे च रोशनी पैदा करनी सी जगाना से एक बल्ब विचो रोशनी नूं जगा लियो। उसने 10,000 वार तजर्बा किया फेल हो गया। 10,000 वार तो बाद जो फिर उन्हें किया बल्ब विच रोशनी आई उन्हें जगा दिता। एक बल्ब जगा आ जिहड़ी रब की पैदा की बिजली नूं प्रगट करना किसे राय। पर प्यारे जिहड़े इस सृष्टि के मालक नूं प्रगट करना होवे उन्हों असी थोड़ा बहुते नाम जप के आखिए गल नहीं बने। कोई होर नहीं तरीका सहु कहिंदे तरीका है ये तू एवें ना दौड़ भज। न्यूटन सी ना प्यारो आकर्षण शक्ति नो पैदा करने वाला की होया है जिन्हें एक सेब थले डिगया उस उहदी खोज शुरू हो गई। वड्डे लोग जिहड़े इन्हां नूं निक्की जी घटना नूं लै के अभ्यास शुरू करके वड्डे बनदे ते अणजाण लोग वड्डियां वड्डियां घटना नूं सुन के वी आखणगे कोई नवीं गल सुणाओ। ये गल्लां दा वणजारा जे धन गुरु नानक साहिब दा नहीं प्यारो गल्लां ना नवीं सुणीए। साहिब मेरे नीत नवें नूं अंदर लिआउण दा करिए यतन। गल्लां नवीं की करनगियां तां रस पैदा होएगा। न्यूटन ने ना होर खोज कीती ते इक वार 20 साल लगा के उन्हें कुछ प्यारो लैब दे अंदर तजर्बे किते वो लिख लै। इन्हें कुत्ता रखिया सी डायमंडो दा नाम। अचानक ना जिस कमरे दे अंदर उन्हें सारे ये तजर्बे वक वक करके खोजा रखे सन भी समा पा के देंगे दुनिया लाभ उठाएगी। अचानक उसने मोमबत्ती जगाई सी। कुत्ता जड़ा सी उन्हें मोमबत्ती दे गए अग ला दे। 20 साल की मेहनत ओरी सड़ के सुहा हो गई। वो अग भबूला नहीं होया काला नहीं पिया। आया जदों बाहरों वेख्या सब कुछ सड़ गया पता लगा भी कुत्ते कारण। उन्हें बस इन्हें क्या डायमंड तू चंगा नहीं किया। बस कहानी मुक गई। नवे सिरों फिर तजर्बा करना शुरू कर दिता। प्यारे हो याद रखो ये रबी राह दियां दातां नूं सालां दे साल नहीं कई जन्म लग के भी कदे थकीए ना हौसले नाल फिर तुर पईए। छोटा जा बच्चा है ना जिन्नी वार डिगदा है वो सवाल नहीं करदा एकदम उठन लई यतन करदा। वड्डे जिन्नी वार डिगदे ने वो पुछदे रह जांदे किवें मिलेगा कदों मिलेगा। बच्चा डिग के उठन दा यतन करदा जिन्नी वारी जपिए रोज ना टिके फिर दोबारा उसे अरदासां ते नाम जपिए। प्यारे सतगुरु आप मेहर करके निवाजणगे। समा खो रहा है आओ सारी संगत सतगुरां दा ये महान पवित्र बचन 2 पंक्तियां दे रूप अंदर सरवण करना है। 2 दिन होर सतगुरु गुरु रामदास पिता जी ने बख्शे ने। इसे तरह आप जी ने असीसा देख के सेवा लेंदे रहे।

तुद जीवन दाता को नहीं तू बख्शन हारू तेरा हुक्म लाला मने यही करनी सारू गुर सागर अमृत सार जो इच्छा सो फल पाई नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाई गुर सेवा सदा सुख है जिसनों हुक्म मनाई सोयना रूपा सब धात है माटी रल जाई बिन नावे नाल ना चलई सतगुर बूझ बजाई नानक नाम रते से निर्मलई साच रहे समाई मारू महला पहला हुक्म भया रहना नहीं तुर फाटे ची फाटे चीर इह आमान अवगुण बाध्या सब देह शरीर है पूरा गौरफ बख्शाई है सब गन गुन फकीर है क्यों रही है उठ चलना बुझ सच शब्द विचारा जिस तू मिलै सो मिलै तुर हुक्म अपारा रहाओ ज्यों तू राख त्यों रहा जो दे सुखाओ ज्यों तू चलावह त्यों चला मुख अमृत नाऊ मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मिलै मन भाओ कीता क्या सालाही है कर देखै सोई जिन की आसोई मन वसै मैं अबर न कोई सो साचा सालाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुँचई बहु आल जंजाला पाप पुन दो संग में हुदया जमजाल जमकाला बेछोड़ा पौ विसरै पूरा रखवाला जिनकी लिख पत पवै से पूरे पाई पूरे पूरी मत है सची वड्याई देंदे तोट न आवई लै लै थक पाई खार समुद्र टंडोली है एक मणिया पावै दोई दिन रात चार सुहागना माटी त सखावै गुर सागर सत सेविया दे तोट न आवै मेरे प्रभ पावन से उजले सब मैल भरी जाए मैला उजल तां थीए पारस संग पी जाए वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जाए भेखी हथ न लभई तीर्थ नहीं दाने पूछो वेद पढ़ंते आ मूठी बिन माने नानक कीमत सो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मनमुख लहर कार ताज बिगुचै अबरा के पकार ही रहे गृह धर्म गवाई ना सतगुर ना पेटै दुर्मत कूमन के रहे दिसंतर पवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरै काची पिंडी शब्द न चीनै उधर भरे जैसे ढोरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रपतासी राओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र भेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा झोली माया तारी कर कर मांगै जग प्रभु दै मन अंधै पत हारी परम पुलाना शब्द न चीनै जुऐ बाजी हारी अंतर अगन न गुरबिन बूझै बाहर पूअर तापै गुर सेवा बिन भगत न होवी क्यों कार चीन स्यापै निंदा कर कर नरक निवासी आत्मरा अंतर आत्म जापै अष्ट तीर्थ परम चुगा बिगुचै क्यों माल तोपै पापै छाणी खाक भूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक न जाने साच कहे तेस कहे ते सो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोलै इन गुरे की मत हो है नाम न जपई क्यों सुख पावै बिन नावै क्यों सो है मूढ़ मुडाए जटा सिद साखी सिख बाधी मौन रहे बमाना मनुआ डोलै दैद सुतावै बिन रात आत्म ज्ञाना अंतर अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कीर्तन मिटई हुक्म न बूझै पशुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़ियां मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तजकार काम ब्या पया चितलाया पर नारी सिख करे कार शब्द न चीनै लंपट है बाजारी अंतर बिख बाहर निबराती दां जम करे खुआरी सो सन्यासी सो सतगुर सेवै बिचों आप गवाई साधन भोजन की आस न करई अचिंत मिलै सो पाई बकै न बोलै खिमा धन संग रहै आत्म नाम जलाई
तन गिरी सन्यासी जोगी जे हर चरणी चतलाई आस निरास रहे सन्यासी एक स्यों लिबलाई हर रस पीवै ता शांत आवै निज कर ताड़ी लाई मनुआ न डोलै गुरमुख बूझै तावत वर जरहाई ग्रही शरीर गुरमति खोजै नाम पदार्थ पाई ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेष्ठ नाम रते विचारी खाणी बाणी गगन पताली जनता जोत तुमारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी नाम बिना नहीं छूटत नानक साची तर तूं तारी मारू महला पहला मात पिता संजोग पाई रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारी दात करे संसार भवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई अफरियो पार अफार टरे राउ ते गुण विसर गए अपराधी सो मैं बौरा क्या करहु हरि तू दाता दयाल सब सिर अनस दात समार करे चार पदार्थ लै जग जनमिया शिव शक्ति कर वास तरे लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोह करे चा लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहि करे करन पुलावन करे नहीं पावे ये तो ढूंढन ढूंढत था कर परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कुटंब स्यों प्रीत करे खावै भोगै सुन सुन देखै बाहर पैर दिखावै काल करे बिन गुर शब्द न आप पछाणे बिन हार नाम न काल टरे जेता मोह हों मैं कर भूले मेरी मेरी करते सीन करे तन तन बिन सह सह सह सह सा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद भया जो बन तन खिसिया कफ कंठ बरुदो नैनो नीर टरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम नरद हरे सुरत गई काली हूं तौले किसै न पावै रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागै जम मार सम्हारी नरक पखरे पूर्व जन्म को लेख न मिटाई जन्म मरै का कौ दोष तरे बिन गुरवाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म मरे जरे खुशी खुआर करे भय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे खुशी खुआर भय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंडक परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभु नजर करे ते निर्मल पुरख परंपर पूरे ते जग महे गुर गोबिंद हरे हर सिमरो गुर बचन समारो संगत हर जन पाओ करे हर जन गुर प्रधान द्वारे नानक तिन जन की रेण हरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मारू काफी महला पहला कर दूजा आवो वंजो डुमणी किति मित्र करे ओ सा धन टोई ना लै वांडी क्यों तीरे ओ मैंडा मन रत्ता अपनड़े पिर नाल हौ कोल कमाई खनी है हिक पोरी नदर निहाल राउ पेय डैडो हागणी सहुर डै कर जाऊ मैं गल औगण मुठड़ी बिन पिर चूर मराऊ पेयड़ै पिर संभला सहुर डै करवास सुख सबंध सुहागणी पिर पाया गुणतास लेप निहाली पटकी कापड़ अंग बनाई पिर मुती डोहागणी तिन दुखी रहन बिहाई किती चखों साडड़े किती वेस करे ओ पिर बिन जोबन बाद गए मवांडी चूरेंदी चूरे ओ सचे संदा सदड़ा सुनिए गुर विचार ओ सचे सचा बहना नदरी नदर प्यार ज्ञानी अंजन सच कार देख देखण हार गुरमुख बूझै जानिए होमै गर्भ निवार तौ भावन तौ जेही आ मूह जेही आ कितिया नानक नहाना विछड़ै तैन सच सचै रतड़िया मारू महला पहला ना भैणा भरजाइया ना से ससुड़िया सचे का सचा साक न तुटाई गुर मेले सहिया बलहारी गुर अपने सद बलहार जाऊ गुर बैन एता पव थकी गुर पैर मेलम दितिम मलाई राऊ
ਫੁੱਫੀ ਨਾਨੀ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇਰ ਜੇਠਾਂ ਨੜੀਆਂ ਆਵਣ ਵੰਝਣ ਨਾ ਰਹਿਣ ਪੂਰ ਭਰੇ ਭਰੀ ਪਈਆਂ ਮਾਮੇ ਤੈ ਮਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਭਾਇਰ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਓ ਸਾਥ ਲੱਥੇ ਲੱਡੇ ਤਿੰਨ ਨਾਠੀਆਂ ਭੀੜ ਘਣੀ ਦਰਿਆਓ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਲੋ ਸਖੀ ਹਮਾਰੋ ਕੰਤ ਸੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸੋ ਸਹ ਰੰਗ ਰਵੰਤ ਸਭੇ ਰੁੱਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਸਿਉਨੇ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ ਸੁਖ ਸੁੱਤੀ ਨਿਸੜੇ ਪਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ ਵੰਝੋ ਤਰੁਕ ਬਿਲਾੜੂ ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂਗ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜੂ ਹਿਕ ਨੀ ਲੱਦਿਆ ਹਿਕ ਲੱਦ ਚਲ ਲੱਦ ਗਏ ਹਿਕ ਭਾਰੇ ਪਰ ਨਾਲੂ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਵਣੰਜਿਆ ਸੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੂ ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਐ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀਐ ਸੱਚੇ ਸਿਹੜਾ ਸੋਏ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਿਆਣਾ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ਅਨੰਦਨ ਨਾਮ ਬਖਾਣਾ ਬਾਬਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਨਾਵੈ ਬਲ ਜਾਊਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਰਾਓ ਰਹਾਉ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਏਕ ਹੈ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਨਾਉ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੇ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਨਸ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਈ ਰਾਜੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪੰਗ ਮਾਲੰਗ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜੁਆਰੀ ਹੁਕਮੇ ਵਾਧੇ ਪਾਸੈ ਖੇਲੈ ਚੌਪੜੇ ਕਾਸਾਰੀ ਜਗ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹੈ ਗਵਾਰੀ ਨਾਉ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਵੇਦ ਸੰਭਾਲੈ ਬਿਖ ਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਤਰਵਰ ਕੰਠੇ ਬਾਗਾ ਪਹਿਰੇ ਕਜਲ ਚਰੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸੈ ਕੀ ਕੋਠੀ ਜੋ ਪੈਸੈ ਸੋ ਗਰਭ ਜਰੈ ਰਯਤ ਰਾਜੇ ਕਹਾਂ ਸਬਾਈ ਦੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਜਾਸੀ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਪੌੜੀ ਰਹਿਸੀ ਲਖ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਸਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸੱਚੈ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਇਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅਬਰ ਕੇ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ਰਹਾਉ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੈ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਉ ਸੰਜੋਗੀ ਤਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਮਤ ਖੋਵੈ ਰੰਗ ਸਿਉਣ ਤਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਵੈਦ ਨ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਉ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈ ਆਪਣ ਲੀਆ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਈਐ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਲ ਤਾਰੀ ਜੀਉ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅੰਜਨ ਸਮਾਰ ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਤਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਸਭ ਤੰਦ ਕਮਾਵੈ ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਉ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਹੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਅੱਗੇ ਬਿਣਨਾ ਵੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਉ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਭ੍ਰਮਤੇ ਭ੍ਰਮਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਅਭ ਪਾਇਓ ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਓਛੈ ਰਸ ਲਪਟਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਬਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਖਿਆ ਸਿਉਂ ਉਰਜਾਇਓ ਰਾਓ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਬਣਜਿਓ ਬਣਜਨ ਆਇਓ ਕਾਲਰ ਲਾਦ ਚਲਾਇਓ ਜਿਹ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਧ ਰਹਿ ਨਾ ਬਸਣਾ ਸੋ ਪਿਆਰ ਘਰ ਉਚੀਤ ਨ ਆਇਓ ਅਟਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਗਾਇਓ ਜਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਥਾਨ ਵਸਾਰਿਓ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨਗਲਾਇਓ
पुत्रक लतर ग्रह देख समागरी यस ही मह उर्जायो जित को लायो तत ही लागा तैसे कर्म कमायो जौ भयो कृपालता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कार अनुग्रह राख लीनौ भयो साधु संग हर नाम रास रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को अस्थान मीत साजन सखा बंद पव अंतर जामी जान राहु संसार सागर जिन पायो शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधे जम कंकर कृष्णा कही मोख मुक्त द्वार जां कहे संत हृदय भंडार जी जुगत ज सुजान स्वामी सदा रखन हार दुख दर्द कलेश बिन सहे जिस वसै मन माही मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताही रिद सिद्ध नव निध जां कहे अमृता प्रवाह आदि अंते मद पूरण सा ऊच अगम गा सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचारु सिमर है सिमर स्वामी सुख सहज पुंच है नहीं अंत पारावार अनक परास्त मिटा खिन मह हृदय जाप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बाल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्बस संतना की रास बिसर नाही निमख मन ते नानक की अरदास मारू महला पंजवा शास्त्र तीखण काट डारियो मन न कीनो रोस आ काजुआ को ले सवारियो तिलना दीनो दोष मन मेरी राम राव नित नीत दयाल देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत राव चरण तलय गाहि बैस्यो श्रम न रहो शरीर महासागर न व्यापै खिन है उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तेस संगे नहीं प्रीत बिष्टा मूत्र खोद तैल तैल मन ना मनी विपरीत ऊच नीच बेकार सुकृत संसल गन सब सुख शतर मित्र सतर न कछु जाने सर्ब की जी सुमत कर प्रगाश प्रचंड प्रगटयो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र करण लागे मन ना पयो बिगा बिखाद शीत मंद सुगंध चलियो सर्ब थान समान जहां सा किस तहां लागयो तिल ना शंका मान सुपाई पाई ना अंजो निकट आवे शीत ता का जाई आप पर का कछ न जाने सदा सह सुपाई चरण शरण अनाथ इह मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाऊ मंगल गोपाल गुण नित गाऊ नानक भई प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुरचरणी मन लागना ही विद तिसे प्राप्ति जाके मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किस नीका जो प्रभ की शरणागना मारू महला पंजवा आओ जी तू आओ हमारे हर जास श्रवण सुना बना राओ तुद आवत मेरा मन तन हरियाओ हर जासु तुम संग गावना संत कृपा ते हिरदय वासै जी दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध प्रगासै दुरमत दुख त जावना दर्शन पेट तहुत पनीता पुनर्प गर्भ न पावना नौ निध रिद सिद पाई जो तुम रहमन पावना संत बिना मैं थाओ न कोई अवर न सूझै जावना मोहे निर्गुण कहो कोई न रखै संता संग समावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना राव पीवना जित मन अगावै नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूखना लागै संतोख सदा त्रिपति बना पहनना रख पात परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मान मध्य हर रास संत संगत मह लीवना
बिनत आगे बिन सूई यानी मान हार भगती संग सीवना मातिया हर रस मह राते तिस बहुड़ना कब हूँ आखी बना मिल्यो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोए पीवना मारू महला पंजवां कर अठवा अंजलियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस ग्रह बहुत तिस ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो ग्रह परमंता दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला भाली है गृह राज मह नरको दास करुदा बहु बिद बेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण काली है जागत सूता परम विभूता बिन गौर मुक्त न हुई है मीता साध संग तुटै हाँ बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हयाली है संसार महे सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बूझै वो बालक बागी पाली है छोड़ बहे तो छूटे नाहीं जो संचय तो पौ मन माही इस ही महे जिसकी पत राखै तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागे तिस जो नी फिरना जो बरताए सोई पल मानै बुझ हुकम दुरमत जाली है जित जित लावे तित तित लगना कर कर देखै अवे अपने जचना कर कर वेखै अपने जचना नानक के पूर्ण सुखदाते तू देह ता नाम संभाली है मारू महला पंजवां बिरखा हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलण मिठे आसा दोत भया उठ चले ज्यों ज्यों औध विहाणिया पाप करेंद्र सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोज कपाए सरजन हारे लेखा मंगै बाणिया संग न कोई पहिया बेबा माल जोगन तन छोड़ वंजेसा करण करीम न जातो करता चल पीड़े ज्यों कहानिया खुस खुस लेंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाम खुदाई दुनिया लभ पया मखात अंदर अगली गल न जानिया जम जम मरै मरै फिर जमै बहुत सजाई पया दे सलमै जिन कीता तिसे न जानी अंधा तां दुख सहे प्राणिया खालक थावो पुला मुठा दुनिया दखेल बुरा रुठ तुठा सदक सबूरी संत न मिलयो वतै अपन भाणिया मौला खेल करे सब आपे एक कड्ढे एक लहर व्यापे ज्यों नचाई त्यों त्यों नचनऊ सिर सिर किरत विहाणिया मेहर करे ता खसम ते आई संता संगत नरक न पाई अमृत नाम सदान नानक काओ गुण गीता नित बखाणिया मारू सोलहे महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद साचा सच सोई अबर न कोई जिन सरजी तिन ही फुन गोई ज्यों गा भावै त्यों रख रहना तुम स्यों क्या मुपराई है आप पाई आप खपाए आपे सिर सिर तंदे लाई आपे विचारी गुणकारी आपे मार्ग लाई है आपे दाना आपे बीना आपे आप पाए पतीना आपे पौन पानी बैसंतर आपे मेल मिलाई है आपे सास सूरा पूर पूरा आपे ज्ञान त्यान गुर सूरा काल जाल जम जो न सा कैसा चेसों लिवलाई है आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी आपे पेड़ बादी जग खेलै आपे कीमत पाई है आपे पवर फुल फल तरवर आपे जल थल सागर सरवर आपे माछ काश करनी कर तेरा रूप न लखना जाई है आपे दिन से आपे ही रहनी आप पतीजै गुर की बैणी आद जुगाद अनाहद अन दिन घट घट शब्द रजाई है आपे रतन अनुपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस बख्शे आपे दे लै पाई है आपे तणख आपे सरबाणा आपे सुगण स्वरूप सयाणा कहता भगता सुनता सोई आपे बणत बनाई है पौन गुरु पाणी पित जाता उदर संजोगी धरती माता रहण दिन सुदोय दाई दाया जग खेलै खेलाई है आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला सर्व जिया जग जोत तुम्हारी अजैसी प्रभ फरमाई है
आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया ब्रह्म संजोगी आपे बेबाणी निरंकारी निरपौ ताड़ी लाई है खाणी बाणी तुझे समाणी जो दिसे सब आवण जानी सेई सा सचे व्यापारी सतगुर बूझ बजाई है शब्द बजाई सतगुर पूरा सर्व कला साचे पर पूरा प्रयो वे परवा सदा तू ना तैसो तिल ना तमाई है काल विकाल भय देवाने शब्द सहज रस अंतर माने आपे मुक्त व तृपत वरदाता भगत पाई मन पाई है आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ माए समाना नानक जी नानक नीच भिख्या दर जाचै मैं दीजै नाम वडाई है मारू महला पहला आपे तौल आपे धरती तौल आकाशं आपे साचे गुण प्रगाशं जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है जिस कर नासो कर कर वेखै कोई ना मिटै ते साचे लेखै आपे करे कराए आपे आपे दे वड्याई है पंच चोर चंचल चित चल है पार कर ज्यो है ते कर नहीं कल है पल है काया नगर टह टह ठेरी बिन शब्द पत जाई है गुरते बुझै त्रिपवन सूजै मनसा मार मन सो लूजै जो तुद पासे वैसे तुद ही देह निर निरपौ बाल सखाई है आपे सुरग मछ पै आला ज्योत स्वरूपी आपे ज्योत स्वरूपी बाला जटा बिकट बिकराल स्वरूपी रूप न रेख्या काई है वेद कतेबी भेद न जाता ना किस मात पिता सुत भ्राता सगले सैलो पाई समाई अलखन लखन जाई है कर कर थाकी मीत कनेरे कोई न काटे अवगुण मेरे सुर नर नाथ साहेब सब ना सिर पाई मिले पौ जाई है भूले चूके मार्ग पावै आप भुलाई तू है समझावै बिन नावै मैं अवर ना दिसै नावों गात में तपाई है गंगा जमुना केल केदारा काशी कांति पुरी द्वारा गंगा सागर बेटी बेणी संगम अस्त्र अंक समाई है आपे सद साधक विचारी आपे राजन पंचांकारी तख्त बहे अदली प्रव आपे परम भेद पौ जाई है आपे काजी आपे मुल्ला आप पुलना कबहू पुल्ला आपे मेहर दया पत दाता ना किसै को बैराई है जिस बख्शे तिस दे बड़ियाई सब सह दाता तिल न तमाई पर पुरतार रहया न केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है क्या साला ही अगम पारे साचे सृजन हार मुरारे जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिले मेल आई है ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारे उबे सेवै लख अपारे होर केती दार दिसै बिल लांदी मैं गणत न आवै काई है साची कीरत साची बाणी होर न दिसै वेद पुराणी पूंजी साच सचे गुण गावा मैं तार होर न काई है जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुगा कौन न मरसी नानक नीच कहे बेनंती दार देखो लिब लाई है मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कर बार सहज न जाने शोहर बिन पर नींद न पाई अंतर अगन पजल है पड़कारी मनमुख थके कुंडा चारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ बढ़ाई है काम क्रोध अहंकार निवारी दस्कर पंच शब्द संगारी ज्ञान खड़ग लै मनसों लूजै मनसा मन समाई है माँ की रकत पिता बिद तारा मूर्त सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है तुझ ही किया जमण मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर दिखै दुख दर्द सिरी रो जाई है निज कर बैस रहे पौ खाया तावत ठाके राखे ठाक रहाया कमल विगास हरि सार सुपारू आत्म राम सगाई है मरण लखाई मंडल मह आई क्यों रही है चलना परथाई सच्चा अमर सचे अमरापुर जो सो सच मिले बढ़ाई है आप पाया जगत सबाया जिन सरिया तिन तंद लाया सच्चा शब्द सच्चाई ऊपर अवरना दिसै साचे कीमत पाई है ऐथै गोलड़ा दिन चारे खेल तमाशा तुंदुकारी बाजी खेल गए बाजी गारो ज्यों नैस सुपने पखलाई है
ਤਿਨਕਾਉ ਤਖਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਰਭਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰੀ, ਤਿਰਭਵਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਏ। ਸਾਚੀ ਨਗਰੀ ਤਖਤ ਸਜਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਸਾਚੇ ਸਾਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਡਾਈ, ਹਉਮੈ ਗਣਤਮ ਗਵਾਈ ਏ। ਗਣਤ ਗਣੀਐ ਸਹਸਾ ਜੀਐ, ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਦੂਐ ਤੀਐ, ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਤਾਤਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੇ ਪਤ ਪਾਈ ਏ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਿਰਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਸਾਚਾ ਰਬ ਰਹਿਆ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਦਿਸਕੀ ਓਟ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਪਕਾਈ ਏ। ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਪਉ ਨਾ ਪਰਾਤੀ, ਸ੍ਰਵਣ ਸਰੋਤ ਰਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਏ। ਰੱਖ ਰੱਖ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪਉ ਧਰਣਾ, ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤੇਰੀ ਚਰਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਤੁਝੀ ਸਾਂ ਬਣਿਆਈ ਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਤੁਧ ਸਾ ਲਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਦਾੜੀ ਲਾਈ ਏ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ, ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਚੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਾਚੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਏ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਤੰਦੂਕਾਰੈ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਚੈ ਤਖਤ ਵਡਾਈ ਏ। ਸਤ ਯੁਗ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ, ਸਤ ਸਤ ਵਰਤੈ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਪਰਖੈ, ਸਾਚੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ ਏ। ਸਤ ਸੰਤੋਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੂਰਾ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਸਾਚ ਨਿਵਾਸਾ, ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਮਾਨ ਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੇ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾਇਕ ਚੂਕੀ, ਤੀਨ ਪਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਛੂਕੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਾਚ ਵਿਖਾਣੇ, ਮਨਮੁਖ ਪਵੈ ਅਬਾਈ ਹੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨ ਦਰਗਹਿ ਸੀ ਜੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਅੰਤਰ ਰੀ ਜੈ, ਆ ਬਾਧੇ ਆਵੈ ਬਾਧੇ ਜਾਵਹੀ, ਸੋ ਜੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਹੇ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ, ਦੋਏ ਪਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੇ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੇ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੇ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਸੂਟੇ ਸੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਅਹਿੰਸ ਭਗਤ ਕਰ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿਉਂ ਬਣਿਆਈ ਹੇ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਹੱਠ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਅਪਤੀਜ ਨਾ ਪੀਜੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਪਤ ਪਾਈ ਹੇ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਖੀ, ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇ ਪਰਵਾਸ ਰੰਦਾ, ਨਾ ਜਮਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ਹੇ। ਗੁਰਮਹਿ ਆਪ ਰਖਿਆ ਕਰਤਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਉਦਾਰੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਮੈਲ ਨਾ ਕਾਈ ਹੇ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੈ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਲਖ ਅਪਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਰਜਾਈ ਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਚੈ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਈ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ, ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਜੋਤ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਭਤੀਜਾ ਲਖ ਪੇਵਾ, ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਖਸ਼ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਹੇ। ਦੇਨ ਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਾਚੇ, ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਚੇ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੈ ਸਾਚ ਨਾ ਰੀਜੈ, ਦੂਜੈ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ ਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਾਚੇ ਕੂੜੇ ਸਾਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਏ ਰਹੇ ਸੇ ਲੂਟੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਵਤ ਭਾਈ ਹੇ। ਕੂੜੇ ਆਵੈ ਕੂੜੇ ਜਾਵੈ, ਕੂੜੇ ਰਾਤੀ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਸੇ ਸਰਗੈ ਪੈਂਦੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੇ। ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਠੱਗੀ ਠਗਵਾੜੀ, ਜਿਉਂ ਵਾੜੀ ਉਹ ਜਾੜ ਉਜਾੜੀ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਿਆਂ ਦੁੱਖ ਪਾਈ ਹੇ। ਭੋਜਨ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਆਗਾਈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਚੀਨੈ ਆਪ ਛਾਣੈ ਸੋਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਹੇ। ਨਾਵੋ ਪੁੱਲੀ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਪਰਮ ਨ ਜਾਏ,
पाँच मुए चेतना चेत है अजगर पार लदाई है बिन बाद मरुद कोई नाही मैं दिखा लियो तेस सालाही मन तन अर्प मिले जग जीवन हर स्यों बनत बनाई है प्रभु की गत मत सो कोई न पावे जी को बड़ा कहाय बड़ाई खावे साचे साहिब तोट न दाती भग सगली तनह उपाई है वड्डी वड्याई वे परवाहे आप उपाई दान समाहे आप दयाल दूर नहीं दाता मिलिया सहज रजाई है एक सोगी एक रोग भे आपे जो किस करे सो आपे आपे भगत पाऊ गुर की मत पूरी अनहद शब्द लिखाई है।

क्या हुए कीमत बाए न कहे आ जाए कहने वाले तेरे रहस्यम वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता केवड़ चीरा राव सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गोर गुरहाई कहन न जाई तेरी तल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया तुद बिन सिद्धि कनै ना पाईया।

सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भई जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तनका पाओ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तप तप हैं जप बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पाव हैं मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीवड़ वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुद आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करें सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सभ्यो पा।

सब तेरी तू सब नीत आया, जिसनों कृपा करहे तन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुझे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना ही सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तन सुख पाया, सहजे ही हर नाम सुमाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए।

देखा दड़ु बियले मान एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ ना हो जति सति नहीं पड़या मूर्ख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तन की शरणा जन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा पई परापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की तेरी बरिया अबर काज तेरे कतै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजा मिलाग भव जल तरन कै जन्म ब्रथा जात रंग माया कै राव जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जान्या हर राया कहो नानक कम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतबारा हमरे दुष्ट सब तुम कहावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी वसै मोरो परिवारा सेवक सिख सवै कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करे सब बैरन कौ आज संगरे पूर्ण होए हमारी आस्था तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उभरे आए मरण काल का त्रास निभरे आए हु जो सदा हमारे पच्छा सरिया सुरजू करे हो रक्षा राख ले हो मोह राख नहारी साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बब धरा काल पाए शिवजू अब धरा काल पाए गर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत जीटी दे गुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानाए कड़ कड़ के बट बट की जान जब उद करख कर करतारा प्रजा दर्द तब दे अपार जब या करख कर तो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील अनाद संभ जाका मूढ़ चारत भेदा जाको भेब न पावत भेदा तां कौ कार्य पान अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीणत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती मरणत भिन्न भिन्न तो हे तेती तुमरा लिखा न जाई पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज सित

दुख सब विसारणा, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारणा। सबना गल्ला समरत स्वामी, सो क्यों मनोविसारी, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब किस है, जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सब पजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु बिटो, जिस दी आए वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, बाजे पंच सब तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जन कहो, से नाम हर कै लागे, कहे नानक तैं सुख होआ, तित कर अनहद बाजे, आनंद सुनो बड़ भागी।

जय कर करते कीर्त हो सो कार राख बड़ाई तो रहो बिश्व जसें कड़ियां पैर थिती वारी महोआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के वे सो राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल राव चंद दीपक बनी तारिका मनोजन कमोती रूप मल्यान लो पवन चबरू करे सगल बंदराई बुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत तेरी राव सहस तब नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूर्त नन आयक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध रैन सहस तब गंध देव चलत मोही सब मैं जो जो तह सोए किसका चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हार चरण कबल मकरंद लोभित मनो अनजन मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारी का होए जाते तेरे नाहि वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर व भरिया मन साधु खंडल खंडाही पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वडाही कर डंडौत पुन वडाही राहो साकत हर रस साधना जानिया तेरे अंतर हो मैं कंडाही ज्यों ज्यों चलहे चुभ दुख पावे जमकाल सहे सिर डंडाही हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख बड़ वडाही जन नानक नाम दार टेक है हर नाम ही सुख मंडाही।

परम सम्मान योग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी की अपार कृपा सदका सत्कारयोग भाई गुरदास जी दियां वारां दी विचार लड़ीवार चल रही है। भाई गुरदास जी दियां 40 वारां दी विचार संपूर्ण होने तो उपरंत भाई गुरदास सिंह जी द्वारा रची गई 41वीं वार दियां 10 पौड़ियां दी विचार हो चुकी है। अगली विचारधारा आरंभ करन तो

प्यारी साध संगत जी, जंग लड़ी जा मोर्चा प्या लाना, सदा सिंघा ने खून नाल चट कीती, सरकार बाबर दी सी जा अंग्रेजा दी, दसो कीने सिंघा नाल कट कीती, साडा पट जमूरा नाल मास खादा, जिने पीती सिंघा दी रत पीती, पर बख्शिया नी मक्खन बराड़ा ओ बंदा जिने हरमंदर साहब वल मैली अख कीती।

महाविक्रम अग्नि को सागर साधु संग उधारी गुण गाओ पूरण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाविक्रम अग्नि को सागर साधु संग उधारे पूरे गुर मेट्यो परम अंधेरा

निदान रस पिया मन काना रहे अढ़ाई जात कत पूर रहो परमेश्वर काटा है कत जाई जप तप संयम ज्ञान तत्व बेता जिस

कालकलेश मिटे दुख सगले काटी जम की हिफास्ता कहो नानक प्रभु कृपा धारी मन तन भय विगासा कालकलेश मिटे दुख सगले काटी जम की फासा

राजन में तू राजा कही है, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, पुस्तक कवन करी जय करते, पेख रहे विस्मा रहा। सुखियन में सुखिया तू कही है, दातन से दाता, तेजन में तेजवंशी कही है, रसियन में राता, सूरन में सूरा तू कही है, पोगन में पोगी, ग्रस्तन में तू बड़ो ग्रस्ती, जोगन में जोगी, कर्तन में तू करता कही है, आचारन में आचारी, साहन में तू साचा सा, व्यापारन में व्यापारी, दरबारन में तेरो दरबारा, शरण पालन टीका, लक्ष्मी के तक गनी ना जाये, गन ना सको सीका, नामन में तेरो प्रभ नामा, ज्ञानन में ज्ञानी, जुगतन में तेरी प्रभ जुगता, स्नानन में स्नानी, सिद्धन में तेरी प्रभ सिद्धा, कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा में तेरी प्रभ आज्ञा, हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मैला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव, पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल, गुण निध सफल स्वामी सेव। हर गोपाल गुरु गोविंद, चरण शरण दयाल केशव, तार जग पव सिंध रहाओ। काम क्रोध हरन मद मोह, दहन मुरार मन मकरंद, जन्म मरण निवार तरणी तर, पत राख परमानंद। जलत अनक तरंग माया, गुर ज्ञान हर रिदमंत, छेद अहं बुद्ध करुणा में, चिंत मेट पुरख अनंत। सिमर समरथ पल मुहूर्त, प्रभ ध्यान सहज समाध, दीन दयाल प्रसन्न पूरन, जाति है रजसाद। मोह मिथन दुरंत आशा, बासना विकार, रख धर्म परम विदार, मनते उदर हर निरंकार, तनाद आद पंडार, हर निद होत जिनाना चीर, खल मुगद मूड कटाख, श्री तर पय गुण मतीर। जीवन मुक्त जगदीश, जप मन तार रिद प्रतीत, जी दया मया सर्वत्र, रमणं परम हंस रीत। देत दर्शन श्रवण हर जस, रसन नाम उचार, अंग संग भगवान परसन, प्रभ नानक पतित उधार। गुजरी की वार महला तीजा, सिकंदर बिराहिम की वार की तुनी गाउनी, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक महला तीजा। इहो जगत ममता मुआ, जीवन की विध नाहे, गुर के पाणे जो चले, ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते, जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै, गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है, आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन, तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे, जो करे सो होई, तदो आकाश ना पताल है, ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है, ना ओपत होई, जो तिस पावे तिवें करे, तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है, दिसे शब्द कमाए, ओ औहानी कदे ना है, ना आवे ना जाए, सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है, जम्मे ते मर जाए, नेफल तिन का जीविया, जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए, नानक एव न जापई, करता केती दे सजाए। महला तीजा।
सच्चा नाम त्याई है सबो वरतै सच। नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई अंधा कच नी कच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सब सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे सतगुर कै पाने वड्याई पावे। नानक आप छोड़ गुरमाए समावे महला तीजा। गुर की सिख को विरला लेवे नानक जिस आप वड्याई देवे पौड़ी। माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी। आन दिन पगती रत्या हर पार उतारी गुर सबदी मन निर्मला हो मैं छड़ विकारी। हर हर नाम त्याई है हर हर निस्तारी श्लोक। कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए मन तो मैं गल हुए रहा निक्षा क्यों कर जाए। ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाओ मुक्त द्वारा मुकला सहजे आवो जाओ महला तीजा। नानक मुक्त द्वारा अतनी का नाना होए सो जाए। हो मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हो मैं गई जोत रही सब आए। यो जियो सदा मुक्त है सहजे रया समाए पौड़ी। प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुर मिले है जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोई है हर मेल मिलीता। सब किस जाने करे आप आपे विगसीता लोक महला तीजा। सतगुर क्यों चित न लायो नाम नवस्यो मन आए। त्रिग एवे हा जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक कसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव हुए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर क्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग क्यों हर नाम रहे लिव लाए। नानक सतगुर को तन सौंपिया जे जी मैं रहा समाए। रंग तिसे को अगला वन्नी चढ़े चढ़ाए महला तीजा। माया होई नागनी जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल लाई पाए। नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए पौड़ी। ताड़ी करे पुकार प्रभु सुनाए सी अंदर तीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी जा हो वै खत्म दयाल ता मेल कर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड़ा गुरमुख मेलाए सी श्लोक महला तीजा। सबना का सो एक है सद ही रह जूर। नानक हुक्म न मनई ता कर ही अंदर दूर। हुक्म भी तिना मनाए सी जिनको नदर करे। हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागन होए महला तीजा। रैन सबाई जल मोई कंत न लायो पाओ। नानक सुख वसन सुहागनी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय कितै न पाई है हर कर्म विदाता। गुर सबदी हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अगन बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता श्लोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए। केसनो कूर बोल के खवाली है जे चलदिया नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पिछो जाए। हौसा माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुक्म ना जातो खसम का जे रहा सच समाए महला तीजा। एको नेचर नाम तन होर तन आवे जाए।
इस तन को तस्कर जोए न सके ना ओ चक्का ले जाए त्यो हर तन जीए सेती रव रहा जीए ना ले जाए पूरे गुरते पाए मन मुख पले न पाए तन वपारी नानका जिना नाम तन खटियाए पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा गुर प्रसादी पाई है नेचल तन तीरा कृपा से हर मन वस है पेट है गुरसूरा गुणवंती सलाया सदा फिर नेचल हर पूरा श्लोक महला तीजा त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे दुखों में पाप कमाए मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे तिन बूझ ना काई पाए हलत पलत कोई सुख ना पावे अंत गए पछताए गुर प्रसादी को नाम से आए तिस होमे विच्चों जाए नानक जिस पूर्व होवे लिखिया तो गुर चरणी आए पाए महला तीजा मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ ओए तरम रलाए ना रलन ओ ना अंदर कूड़ सुहाओ नानक करते बनत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे गुरमुख तरे जप हर नाओ पौड़ी बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवे जाए सतगुर की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाईए विच्चों आप दुआई तृष्णा पुख विच्चों उतरे सुख वसे मन आई सदा सदा सलाहिए हृदय लिवलाई श्लोक महला तीजा जे सतगुर सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल सांत वसे जप हृदय सदा सुख होए अमृत खाना

जेवड अवरना कोए, वाह वाह अगम अठाओ है, वाह वाह सच्चा सोए, वाह वाह वे परवाओ है, वाह वाह करे सोए, वाह वाह अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोए, वाह वाह कर्मी पाई है, आप दया कर दे नानक, वाह वाह गुरमुख पाई है, अंदिन नाम ले महला तीजा। बिन सतगुर सेवे शांत ना आवई, दूजी ना ही जाए, जे बहु तेरा लोची है विण कर में ना पाया जाए, जिना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, जम्मन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए, जिना सतगुर से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए, नानक गुरमुख उबरे सच्चे सब समाए पौड़ी, ताड़ी तिसनो आखी है जे खत्मे तरे प्यार, दर खड़ा सेवा करे गुर सबदी विचार, ताड़ी दर कर पाए सी सच रखे उरतार, ताड़ी का महल अगला हर कहना है प्यार, ताड़ी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा। गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कह शब्द विचार अंग दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की थी करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिय निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, ऐसे सुख वडियाया दरगे मोख द्वार, पैसे निरपो पाई है मिल ज्योति ज्योत अपार, नानक खसमे पावे सा पली जिसनो आपे बख्शे करतार। महला तीजा। सदा सदा साला ही है सच्चे को बल जाओ, नानक एक छोड़ दूजे लगे साजेवा जल जाओ, पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया, ज्यो राजे राज कमाऊं दे दुख सुख पिड़िया, ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया, निर्भव निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया, सिखे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जग थिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब कुछ आवन जान है जेता है आकार, जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आ प्रवान, नानक जे को आप गणाईदा तो मूर्ख दावार। मैला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा, जह किंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा, फिर उजड़ पाए पौड़ी, तिस आगे अरदास जिन उपाया, सतगुर अपना सेव सब फल पाया, अमृत हर का नाम सदा त्याया, संत जना के संग दुख मिटाया, नानक पै अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत न्याला उचिया कर उच्चा निर्णय, महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो, बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे, नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास, नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे प्रगास पौड़ी, प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुझ त्याई, जी जन सब तेरिया तू रहा समाई, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई, चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे से उचित लाए, महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहना है पौड़ी, आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट, आपे सागर आपे बोहता आपे ही खेवाट, आपे गुर चेला है आपे आप।

किस संयम तो ताजाए जो आपसी मन धोवाओ शब्द ला दो जेड़ा पतत नू पवित्र कर सकता है मन नू धोता जा सकता है मैल लाई जा सकती है।

भी एक जीवन है, वो जीवन जेड़ा जीवन सानू मालक तक, क्योंकि संसार तो निरंकार तक दी यात्रा भगती सिमरन ही एक साधन है। जिस अमृत नाम राही जीव, इस जीव दा ते मालक

लोक परलोक के सहाय जुगो जुग अटल तन तन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीहां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शाम दे सजे दीवाना सवाईमान गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जीओ गुरु बख्शिश रहमत संगत करन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु पिता जी दे पावन पवित्र दर्शन नसीब होए हन। गुरु महाराज जी दा कोटान कोट शुक्र है। सज्जे दीवाना विच जिथे रहरास साहब जी दे पाठ होए उपरन गुरु घर दे सत्कारयोग रागी जथियां पासों आप जीआं ने तुरकी बाणी दे कीर्तन सरवण कीते। आओ कुछ कु समां गुरु पिता जी दी रहमत दा सदका चल रही लड़ी वार शब्द विचार सांझ कर सकीए। कोई विचार आरंभ करन तों पहला बेनती करके सतगुरु जी रहमत करके हिरदे च वस के रसना ते बैठ के शब्द दी विचार करवा लैणी जी। समूह साध संगत दे चरणा च निम्रता सहित बेनती है जी। असीस दिओ गज वज के गुरु फतेह सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप दीना ने आसा राग विच धन गुरु गुरु रामदास महाराज जीआं दे शन सरलेख टाइटल थले जो शब्द दर्ज हन 17वां शब्द दो पदे सरवण कीते हन। दो दी विचार कल होई सी अज जो गुरु पातशाह रहमत कर रहे हन। हम क्या गुण तेरे वितर स्वामी तू अपर अपारो राम राजे। हे प्रभु हे मालक स्वामी राम राजे कुल सृष्टि दे राजे कुल ब्रह्मंडा खंडा दे रचनहार प्रभु। हम असी तमाम जीव क्या गुण तेरे वितरह स्वामी तेरे गुण तेरे परोपकार उन्हां दा किन्ना कु किते विस्तार कर लवांगे की वर्णन करांगे किन्ना कु उन्हां नू बयान कर सकांगे। क्यों तू अपर अपारो राम राज हे प्रभु तू परे तो परे है अंत तो रहत जिसके गुणा नु पूर्ण तौर ते बयान नहीं कीता जा सकता। गुरु पातशाह पितर बाणी विच वैसे ते सतगुरु जी जे किते भाई लालो नाल भी विचार हुंदी है ते कह देंदे हन जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये बोल मेरे अपने नहीं ये मालक दे बोल हन। ओयो बुलाउंदा है ओयो अपनी सिफत सलाह कराउंदा है। तन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज हौ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्म आओ जी। जिन्ना कु किया ये तेरे हुक्म तेरी रहमत नाल

दर्शनं प्रयासी जनसरात् चित्ववंदन निवेदितं खोल कपट गुर मिलिया

मन लोचै गुरु दर्शन ताय बिलप करे चातर की न्याय त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत पे।

नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगमान पंचे सोहे हैं दरगा जान पंचां का गुरु एक ध्यान। जे को कहे करे विचार करते कह करने नाहीं सुमार तौल धर्म दया कपूत संतोख थाप रख्या जन सूत। जे को बुझै हो बस जार तबले उपर के तापार करती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाव सब ना लिखै बुढ़ी कलाम ए लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखया केता होए। केता तान सवाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूत किता बसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरी।

गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे है मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन पाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावे है जोध महाबल सूरा गावे है खाणी चारी गावे है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गावे है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी हो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख किता अपना जिव तिस दी वढ्याई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब

जुग जुगे कोवेश। एक दूजी पौ लख हो है, लख हो वै लख वीस, लख लख गेड़ा आखियां है, एक नाम जगदीश। ए तरह पत पवड़ियां चढ़िया हुई अकीस, सुन गला आकाश की टाया रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस, आखण जोर चपैन है जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती ए छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर विखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़ी है, रूप रंग के वेश। केतियां कर्म

विजय अखिजय विजय समाज तंग प्रसिजय कृपालन स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय से दंग नवासी चरपट चंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल योगे जल भोगे जल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भूता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत दग प्रसाद आद्रूपनाद मूर्त जोन पुरुष पार सर्व मंत्र मान देव बेवाद उदार सर्व बालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरुष उदार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए फल न राग नाम काम विहीन पेखत दाम हो न जाहि सर्वमान सर्वतर मान सदैव मान तदाहि एक मूर्त अनेकद

महेंद्र मुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है दैवन स्वरूप है प्रीति अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्वास रूप है गाध अनूप है ओंगाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिभाद्य गंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सर्वान रागे त्रिपुक स्वरूप है सज शूत है किणर्गं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है निरोक्त सदा है विभक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है नंग है पीख है लीख है ब्रह्म है कर्म है नाद जुगाद है अजय है पय भूत है दूत है ना शब्द असंध है बंध है अपक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है अनंत है सुनंत लेख देख लीख पीख टाय गाय संभ गंभ नील नाद है अन्यता सुनता जात है जाद है चरपट छंद।

सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांतता प्रसाद नमो नरक नाशेष देवं प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमातिं प्रमाते सदा सर्वसाधे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सुमित्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते नृसाकं श्रीगामितोमी गाय सदैवं प्रवाहे जय जाहे भगवती शांतता प्रसाद के जहर जूर है के हाजर हजूर है अमीसल सलाम है सुहा तलकलाम है के सब दुआग है के उसन चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी रहम है के राज करहम है करीमल कमाल है के उसन जमाल है गनीमल खराज है गरीबल निवाज है हरिफुल शिकान है रास लिप कान है कलंक प्रणास है समातुल निवास है कंजल गनीम है जय करीम है समातुल जवा है के साहब गिरा है के नरकंग प्रणास है बैतुल निवास है।

मैं मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व वारण है, त्रैट के धरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मांड है, खलखंड है, भरते पर है, करुणा कर है, जपा जप धप धप है, कृता कृत अमृत अमृत है, अमृत अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी धृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत अमृत अमृत है, जपा कृत अमृत अमृत है, नर नायक है, खल गायक है, विश्वम्भर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायिक है, पवपंजन है, अर्गंजन है, रपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जस के जास है, भुजंग प्रयात शांब नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंग स्वरूपे अभंगंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकामे त्रिपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनोपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्र काले अनंगी कामे एक अक्षरी संग अजय अलय भय भय अपू अजू अनाथ अकाश गंज बंज लख पख अकाल दयाल लेख पीख अनाम काम गह डह अनाथे परमाथे जो नियमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंज लेखे भुजंग प्रयात शंब नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणाशे अगंजलो नामे समास्तल निवासे नृकाम विभूते समास्तल स्वरूपे गोकर्म प्रणाशी सुधर्म विभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणाशी गरिमल गुणिंदा समास्तल निवासी अजैब विभूते विजैब गणिमय हरियंग करियंग करिमधुर हिमय चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते सुजम पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग भूते चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते सुजम पव सुभंग

सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दयांत जैसने उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझे हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सदरन को बल मोहबद कियो, गड़गड़ के अंतर की जानत, बले बुरे की बीर बजानत। चीटी ते गुंचरिया सूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाई साधन के सुखी।

पुण्या तुझे तुझे तिलबुआ तुझो अंदर खेत खेत अंदर खुटिया खेत अंदर खुटिया बलिया पुलिया बपुड़े सीता भी सुखुआ पौड़िया पीना आप साजियो आप सुंदर साजी है कार्य सुनवा।

0: कड़िया सब बैगो पिया बाहर कम गोपाल कहने पौन पानी बसंत सूरज अवतार सगली धरती मालतन बर्तन सर्प
1: महला पहला वाइन के लिए नदी बोल पर लाइन फिर दिल उदो रावा चाहते पाई देखा लो।

0: किसे ना जाने का जो कदिकार ऊपर बैठे पूरे यार मत किसे में मत किसे यही अनसादा
1: कल पिता बैठ करे मारा जुटा चली पहन कहो ना सच की हरियाणा तो हुआ ना

अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लूड़े पंजवा पाया किस ताहो वापा तुवेते

रहना ना ही अच्छा तकार कार्मणीय नंदा खेना किया पर खड़े हो कुछ नहीं अनुरूप खेना।

राम कली मोहल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु का साथ आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज ती मनोजिया भाराए राग रतन परवार परिया शब्द गा

अष्टपदे रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार सिंह गारिया गर्भ अग्रम है जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साग सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्त लिहो तौ नानक सीझै जे प्रसाद तर ऊपर सुख बस है सुत प्रात मीत बंता संग हस है जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूढ़ अंध ब्यापे नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे आदि अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाति सेवा नवनिध पावै तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जान पदूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा यो कूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए किसका श्रम करै संग सहाई किस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर्धभ प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पत

अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हरी कृपा मह सुख कनेरे ओए न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुम

जिसके अंतर बसे निरंकार, इसकी सी तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जान, अपना किया आप है मान। आप है आप, आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपास सियानप सगल ते रहत, सब कछ जान आत्म की रहत। किस पावै तिस लय लड़ लाए, शांत नंतर रह समाए। सो सेव

मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो

भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचे ऊंचे, साध की शोभा मूछते मूछे, साध की शोभा

ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर उपरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन।

ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल

ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस कराए प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर।

बहुविध अनेक प्रकार पदे कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमह उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कौहिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट

कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर।

कई कोट नरक सुर्ग निवासे, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खा है, कई कोट का लह थक पा।

इसके हाथ हुए ता सब किसले जो तुस पावै सोई करे अनजानत दिखिया मह रचै जे जानत अपने आप बचै पर में भूला दह दिस्तावै निमख माहे चार कुंत फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले इन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस सत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न गण जगदीश

कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा। कबहू अप कीर्त में आवै, कबहू पला पला कहावै। ज्यों प्रभु राखै तिन ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोमतारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै भरमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभु भावै ते वै नचावै। जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कबहू साध संगत एहु पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु।

कछ संग न जावे, बहुलस्कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतरता का होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे न बदा आप।

संत का दुखन आर जा कटै, संत का दुखन जमते नहीं छुटै, संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक मह पाए, संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै रा कोए, संत का दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत का दुखन ते मुख पवै, संतन का दुखन काग ज्यों लवै, संतन का दुखन सर्प जोन पाए, संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन का दुखन तृष्णा मह जलै, संत का दुखन सब को चलै, संत का दुखन तेज सब जाए, संत का दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाओ को नाहि, नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहि, संत का निंदक महा अत ताए, संत का निंदक खिन टिक न पाए, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरनीन, संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को

अपवित, संत का दोखी किसै का नहीं मित। संत के दोखी कौ डाल लागै, संत के दोखी कौ सब त्यागै। संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा विकारी। संत का दोखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते।

संत का दोखी किता काज ना पहुंचै, संत के दोखी का उद्यान भरमाइयै, संत का दोखी उजड़ पाइयै, संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लो।

होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघन न लागे कोए। पुस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो,

एक ऊपर जिस जन की आसा, इसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक सहन लाग है दुख। जिसका हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं दुलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेव कौ किसते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोधत सोधत सोधत सीझिया, गुरप्रसाद तत् सब बूझिया। जब देखौं तब सब किस मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। नै किस जन्मै नै किस मरै, अपन चलत आप ही करै। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रच थाप्यो थाप। अविनाशी नाही किस खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख भेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख विसारन। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जप भय निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनो कृपा करह बड़भागै। नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख का उत्तम करमान। जो किस करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाए होवै सो होए, करनै हार पछाणै सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माहि समाए, ओए सुख निदान उनहु मन आए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर।

सतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जापे अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचा कोए। तिस बिन नाही तेरा किस काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल घट सो है। धनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर्ब है। अपसूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को होए बह दातार तिस देन हार जाने गावार। जिस गुरप्रसाद टूटै हो रोग नानक सो जन सदा अरोग। ज्यों मंदिर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मन है असमन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यों अंधकार दीप प्रगास गुरदर्शन देख मन होए विगास। ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की बाछों तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइय पुरब लिखे का लिखिया पाइय। दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू सच तार। जो कछ करै सोई सुख मान भूला काहे फिरै अजान। कौन बस्त आई तेरा।

प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मह कल राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काटत आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन करत बहु पाप।

न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्मानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सत बलिहारी सत

करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ, इहो तन संचहो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रखो मन मा।

जब आकार एहो कछ न दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संक मात। जब इसका वर्ण चिह्न न जापत, तब हरख सोग।

प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर आगमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै

होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचरजा, नानक अपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता।

जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपहि प्रवीन, तै बेर कतेब कहां को चीन। जब अपने आप उतारै तो सगन अपसगन।

जय पसरै पासार संत प्रताप, दुहु पाख का आप है तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आप है कौतुक करै अंध चोज, आप है रस भोग निर्जोग। जिस पावै तिस अपन नाय लावै, जिस पावै तिस खेल खिलावै। बेसमार खहा अगंत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा।

गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ।

आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै ता लए समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ओरै कहो किनै कछ करा। आप भला करतूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गात्मित कहीं न

संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर धन के पर लिहो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुंत कमाल।

कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै। प्रगति गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सबरेन, अमृत नाम साध संग।

नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसह प्राप्त होए खेम सांत रिद्ध नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या।

दास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एह उन्दान जपै मन खोए सब जुग मैं ताकी गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रत पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम।

योगी सुन त्यावर जेते लख नाम करता। सूखम मूरत नाम निरंजन काया काकार। सतिया सतिया मर संतोखो।

तटा खेत मेखा खेता दीपालवा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेर जूत पजा खानी सेत जा सो मित जाने नानक सरा मेरा जनता नानक जनते पाए के संभाले सबना जिन करता करना किया।

0: जात मह जोत जोत मह जाता कल कला पर पूरा है। तू सच्चा साहिब सिव सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बात जो कुछ करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्द ज्ञान सब

एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा आत्मवास कुजन पे नानिकता का दास है।

कह रहा परपूर राम नाम दिवा महसूर। नाय लय पराचित जाहे नानक तो मोख अंतर पाहे। जुज मैं जोर छली चंद्रावल काम कान कृष्ण जादम पया। पार जात गोपी लाया बिंद्रावन मह रंग किया। काल मह बेद धर्मन हुआ नौ खदाई अलो पया। नील वस्त्र में कपड़े पहरे तुर्क।

सब किस साचा साचा है सोई ऊतम ब्रह्म पछाण कोई सच साचा सच आप जरड़ाए नानक आपे वेख आपे सच लाए सब किस साचा साचा है सोई ऊतम ब्रह्म पछाण कोए सच साचा सच आप जरड़ाए नानक आपे वेख आपे सच लाए। वाहिगुरु जी का खालसा।

जे वस्त्र मंगी है, साई साई है जे नाम चित लाई है। सतगुरु जी फरमाते ने जे तू ये चाहना है कि जो मैं इस दर तो मंगा, जो भी मैं प्रयास करा वो पूरी होवे, जो भी मन के विच मेरे फुरने ने, जो भी संसारिक जो चाहिए है, संसारी सुख जो चाहिए है, इस दर से आके जे तू ये चीजा मंगना है, जो चीजा हासिल करनी है, तो सतगुरु जी कहते हैं जे वस्त मंगी है साई साई है, शर्त की रख दी जे नाम चित लाई। जिस उस प्रभु के नाम के अपने चित्त अपने मन में जोड़ के बंदगी

गुरु जी इतने सेवक भवन करने जी कीर्तन कर दिया भवन पर हुई अनेक ही प्रकार की गलतियां तुम दिखी मां प्यार सतपति बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: सौ गुरु शासन मुझे इतनी सेवा प्रदान करनी जो कीर्तन कर दें बाणी पढ़ दें अनेक प्रकार की गलतियां अपना लिखना प्यार सतपत बुलाओ जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।
1: Thank you.

पूजतायो चिर कमलनि करे सुकारे कहु लख्यो हर वाक्य सुकारे कहु लख्यो हर वाक्य।

उस अगम रूप परमात्मा का स्थान टिकाना मन में है। पर गुरु कहते हैं एक गल भी किसी विरले गुरमुख द्वारा ही मिलती है, नहीं तो लोग तीर्थों से भटकते फिरते हैं रब न मिलने लिये।